मोह नित चगरते चगराया, हम राख राख दीन तेरे अर शरण हर प्रभ आया। शरणागति प्रभ पालते अर भगत वछलनाया, प्रहलाद जन हरण आख।

इतनी हाजरी प्रवान करनी पुलचुक की खेमा सुभाव हुण आप जीआं नूं सत्कार योग ज्ञानी प्रतपाल सिंह जी पटियाले वाले कथा गुरमत विचारां द्वारा निहाल करनगे। उन्हां तों बाद रागी भाई भिंदर सिंह जी श्री दरबार साहिब वाले, उस तों उपरंत जो भाई लखविंदर सिंह सोल दा ढाडी जथा ते 9:15 दे करीब जो रैन सुभाई कीर्तन आरंभ होने हन जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

संतरेन जहे लग भवजल तरना, बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पहावै। देहो दर्श मन चाओ।

है हे भाई तू नाम त्या हाले भी बेड़ा डुले बेरां दा कुछ नहीं बिगड़िया। कहावत है ना कहिंदे जिन्नी देर तक शरीर च साह चलदे आ कुछ नहीं बिगड़िया। हाले भी बेड़ा वेला भाई नाम त्या जदों तू नाम त्याएगा दर सच्चा सोभा पाई। तू वाहिगुरु परमेशर दे सच्चे दर देते जाके सोभा पावेगा माण प्राप्त करेगा दोहां जहाना च सत्कार प्राप्त करेगा। खालसा जी अक्सर असी दुनिया के बंदियां दी परवाह करदे आ भी लोग की आखणगे लोग की कह रहे ने। मैं अक्सर बेनती करदा हुन्ना वीर दीप सिद्धू ने एक बड़ा प्यारा बचन कहा सी किसे समय जदों लोग उन्हूं गदार कहिंदे सन जदों लोग आखदे सन कि यह गदारां दा इंसान है यह किवें साडे विच आ गया घुसपैठ करन आया है तां उदों उन्हें बड़ा प्यारा जवाब दिता सी। वो कहिंदा मैं दुनिया के लोगों का जवाब दे नहीं हाँ लोग की आखते ने मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं अपने गुरदेव गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह साहब के सानमुख किहो जिहा हाँ वह मायने रखता है। मैं अपने गुरु की दृष्टि च की हाँ मैं अपने गुरु नूं जवाब दे हाँ ना कि दुनिया दिया लोगों नूं। हे गुरमुखो प्यारियो इत्थे गुरदेव जी कह रहे ने कि अकाल इस दुनिया में जिन्ने मर्जी लोग बड़े बड़े सोभा वाले है कहते जी फलाने बंदे की बड़ी सोभा है पर नहीं जानिए भी अगे परमात्मा की दरगाह विच उहदे नाल की बीतनी है। इत्थे जिन्हां दी सोभा हो सकदा वड्डा होआ दुनीदार गल संगल घत चलाया ते इत्थे लोग जिन्हां नूं गदार दा टैग लाण हो सकदा वह निरंकार अकाल पुरख की दरगाह विच सच्ची सोभा पाउण वाले होवण। इस करके परमेशर की दृष्टि विच की हाँ वह असीं अपने अंदर झाती मार के वेखणा है। दूजिआं दे औगण फरोलण तों पहलां अपने अंदर झाती मारी असीं खड़े कित्थे आ। असीं अकाल पुरख की दरगाह च जाणा है उत्थे साडे किहो जे कर्म हन ते असीं उत्थे जवाब दे होणा ये साडे अंदर साडे आपे नूं पता होना चाहीदा है। दूजिआं दीआं गलतियां दूजिआं दे औगण दूजिआं दीआं बद फैलियां फरोलण तों पहलां अपने अंदर झाती मार के वेखी असीं कित्थे खड़े हाँ। आप नड़ै गिरीवान मैं सिर नीवा कर देख अपने अंदर झाती मार के वेखण दा यतन करना चाहिए। सो इनियां बेनतियां आप जी ने प्रवान करनियां। संध्या दे दीवाना दी दास दी अज समाप्ति दा दीवान है। कल दोपहर नूं आप जी दे दर्शन परसांगे छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब दा पुरब मनाया जा रहा है पलाई साहब दीआं संगतां वल्लों जिथे महाराज छेवें पातशाह ने चरण पाए बख्शिशां कीतियां उस इलाके की सारी संगत गुरपुरब मना रही है। कल दोपहर के समागम च छेवें पातशाह जी की महिमा गावांगे रल मिल के। तो अज दास की यह हाजरी आप जी ने प्रवान करनी कोटान कोट शुकराना जगत पिता श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का आप सारिया संगतां का धन्यवाद अकाल जोत सिंह का धन्यवाद जिन्होंने नाल पाठ पढ़ाण की सेवा की है इत्थे सेवा निभाउंदे है कार विहार अपनी किरत विरत भी करते हैं पंथ के महान प्रसिद्ध विद्वान ज्ञानी सुरजीत सिंह जी सोधी जिन्होंने सैकड़े विद्यार्थियों गुरमुख की विद्या के नाल जोड़ के गुरु पंथ के प्रचार प्रसार वास्ते प्रचारक बनाया उस परिवार विच उन्होंने पोतरे हैं उन्हें पोथी पढ़न की सेवा निभाई धन्यवाद। आओ अखीरलियां पंक्तियां पढ़ के समाप्ति करिए जी।

0: वाहिगुरु
1: जी
0: वाहिगुरु वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी वाहिगुरु वाहिगुरु जी वाहिगुरु वाहिगुरु जी

युद्ध च इहदा कोई मुकाबला नहीं। इहदे सामने द्वंद युद्ध च मुकाबला करन वास्ते ओह इंसान नूं भेजा जावे जिहड़ा निपुण महान योधे बाबा बिधी चंद साहिब जी नूं इशारा कीता छेवें पातशाह ने गुरां दा शेर करके कमर कसा ये गाजी कमर बेग का मुकाबला करने वास्ते रण तत्ते जा गए। सरवण करिए बिन किता जा।

जन्म मरण कीते मुख उजल सदा सुखी नानक सिमरत एक ओंकार सतगुर प्रसाद राम कली मन दा तीजा आनंद।

काम क्रोध अर लोभ मोह वश करे सब है बल सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवै गुर नाम नित दरियाओ जन्म हम।

दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ नाथ संत मारी आयो नानक के प्रभ साथ अष्टपदी जय मात पिता सुत मीतरा भाई मनोहा नाम तेरे संसार जय मां प्यान दूत जम दले तक केवल नाम संग तेरे चले जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम किन माए उधारी अनक पुन्न है चरण करत नहीं तरे हर को नाम कोट पाव पर हरे गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे सगल शिष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जप तुए सुखिया

सगल पुरख में पुरख प्रधान साध संग जाका मिटे मान आप सुखो जो जाने नीचा सो गुनिये सब ते ऊंचा जाका मन हुए सगल किरी ना हर हर नाम तिन कर कट जीना मने अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल शिष्ट साजना सुख दुख जन संदिष्ट चेता नानक पाप पुन नहीं ले पाप

माया मिथ्या जाम राज जवन तनमाल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती असवस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेग हस्ता मिथ्या त्रो मोह अपमान मिथ्या अपसु पर करत गुमान अस्थिर भक्त साध की शरण नानक जब जब जीवे हर के चरण मिथ्या सर्वन पर निंदा सुने मिथ्या पर दर्व कोहरे मिथ्या नेत्र पेक्ष पर तिरया रूपाद मिथ्या रसना भोजन स्वाद मिथ्या चरण पर विकार कुतावे मिथ्या मन पर लो लुभावे मिथ्या तन नहीं पर उपकारा

पावे नान पसती कर जावे जे प्रसाद रो कंचन दे लिव लावो तिस राम स्नेही जे प्रसाद तेरा उल्ला रहे मन सुख भावे हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सड़नी पर ठाकर पर ताके जे प्रसाद तुझको ना पहुचाए मन सा सा सिमरो प्रभु उच्चे जे प्रसाद पाए दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद भूखन पहरी जे मंत सिमरत क्यों आलस की जे प्रसाद असव हस्त सवारी मंत प्रको कबू नाम सारी जे प्रसाद भाग मिलक तना राग प्रवे प्रवे अपने मना जिन तेरी मन बंत बनाई उठ बैठ सत से त्याई तिसे त्याई जो एक लखे इहां हुआ नानक तेरी रखे जे प्रसाद करे पुन बहु दान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू चार बिहारी प्रको सास साजदारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा नु जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुने करन नाद जे प्रसाद पेखे विस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुसहजे बसना जे प्रसाद हस्त कर चले जे प्रसाद संपूर्ण भले जे प्रसाद परम गत पावे जे प्रसाद सुसहज समावे

मन मूर्तता को जाप। जे प्रसाद तेरे कार्ज पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू तासुरा। जे प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप। जपे जप सोए आप जपाए जपे सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ। राव कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभु सो प्रसन्न वसे मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए। सर्वनिधान प्रभु तेरी मैं आया पो कछु न किन्हू ले आया।

साध के संग यहाँ वहां सुहेला साध संग विचरा तर मेला जो इच्छे सोई पल पावे साध के संग न बिरथा जावे पार मन साध रिद बसे नान गुदरे साध सुन रसे साध के संग सुनो हर नाओ साध संग हर की गुंगाओ साध के संग न मन ते विसरे साध संग सर्प निस्तरे साध के संग लगे परम मीठा साधु के संग कट कर डीठा साध संग पे आज्ञाकारी साध संगत पई हमारी साध के संग मिटे सब रोग नान साध भेटे संजोग साध की महिमा वेद न जाने जेता सुने तेता बख्या ने साध की उपमा तह गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंचते ऊंची साध की शोभा मूझते मूची साध की शोभा साध बन आए नान साध प्रभेद ना पाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवन पिखे एक बिन कोए नान के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अश्वरी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल लेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्व को सोक ब्रह्म ज्ञानी कह दृष्टमान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी कहती जेक ज्यों वसुदा कौ खोदे कौ चंदन लेप।

आज ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता ब्रह्म ज्ञानी एक संगेता ब्रह्म ज्ञानी कह हुए चंद ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रवे आप ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दस बट भागी पाइये ब्रह्म ज्ञानी को मल मल जाइये ब्रह्म ज्ञानी को खोज जाये महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाए दाखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नान ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सजीवे नी मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता

दसा कोई होए पया कीर्तन में टेक हुए नान जाने सच्चा सुरे सब कर दिसके हो करने हार सास दा दिसको नमस्कार बबकी उस्तत करो दिन रात तेज त्यावो सास ग्रास साब कुछ बरते दिसका किया जैसा करे तैसा को तुया अपना खेले आप करने हार दूसर कौन कहे विचार जिसनों कृपा करे।

राज में राज योग में जोगी ताप में तपिसर किस में भोगी त्याय त्याय भक्ता सुख पाया नानंद प्रकार के अंतरा पाया जाकी लीला कीमत ना।

नाम के धारे पुरिया सब भवन, नाम के संग उदरे सुन सरवण, कर कृपा जिस अपने नाम लाए नान चौथे परमेश्वर जन गद पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरुख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरुख समा समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पाद सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए जिसे सब भली सत नाम प्रकाश उदाय विश्वास सत नान गुरते पाई सात वचन साधु उपदेह सत जन जाके हृदय प्रोह सत निर्द पूजे जे कोय नाम जपदा की गत होए आप सत की असत सत आपे जाने अपनी मेहत गत जिसके सुकरने हार एवन बूझ करत विचार

ताकि खदमत कही ना जाए, दूसरा होए तो सोझी पाए। तिसका किया सब प्रवान गुरु प्रसाद नानके जान, जो जाने ते सदा सुख होए, आम मिलाए लै परसोए, ओ धनवंत कुलवंत पदवंत, जीवन मुक्त जिर दे भगवंत, धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद समझ तराया, जन अवन का है सुहाओ, जन के संग त्यावे नाम।

장관의 그 गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का ए आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल रतन संत कुमावत हो तो उधार आप तेरे लोका निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लगा रंग जय जय शब्द नाद बाजे सुन सुन आनंद करे प्रभु का

तत्काल उधारे निर्मल शोभा अमृता की बाणी एक नाम मन माए समाणी दूरो बिनसे पे परम ना साध नाम निर्मलता के कर्म।

सोचाए सोच ना हो भई जे सोची लाख वार छुपै चुप ना हो भई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सह सुसियाण लख हो है ता एक ना चले नाल किव सचिया राह हो किव कूड़े टुटै पाल।

असंख जाप असंख भाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख रनमुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंग भगत गुण ज्ञान विचार असंग सती असंग दाचार असंग सूरमो पाख सार असंग मोल लिवलाय चार

साहिब जी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुखवाग पातशाही दसवीं शपे छंद त्वय प्रसाद चक्र चिन्ह अर बरन जात अर पात निहंजे रूप रंग अरे पे को कह ना सकत कह अचल मूर्त अनुभव प्रकाश संतोष कहे जय कोट इंद्र द्रहण शाह गणित जय।

चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र दानिए चा श्री छंद न सतरे न मित्रे न परम न मित्रे न कर्म न काय न काय जन्म अजाय न चित्रे न मित्रे परे पवित्रे प्रति से अधिसे अधिसे अकिरसे भक्ति शन द्वय प्रसाद के सिज देसे के बिज पेसे के गंज घर में के पंज भर में के बिज लोके के उदित सोके के दूध बरने के विभूत करण के राजन प्रवाह के धर्म तुझा के शोक भरने के सर्वा भरने के जगतं कृति है के शत्रन क्षत्रिय के ब्रह्म स्वरूप के अनुभव अनूप के आद देव के आप भेव चित्रम बहीने के दीने के रोजी रजा के रजी रही मेरा के पाक व्यय में के कह बुल गय में के अबुल गुनाए के शान छाए के कारण को निंदे के रोजी रहने के राज कर ही में के कर्म करी में के श्रवण कलिये के श्रवण दलिये के स्रोत्र मानिए के स्रोत्र दानिये के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देसै के सर्वत्र भेसे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेस है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भुख है के सर्वत्र त्राणे के सर्वत्र पाणे के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेस है के सर्वत्र मानिए देव प्रधानी है के सर्वत्र जापी है के सर्वत्र थापी है के सर्वत्र पाने के सर्वत्र माने के सर्वत्र इंद्रे के सर्वत्र चंद्रे के सर्व कलिमे के परम पहिमे के आकल अलामे के साहिब कलामे के हुसन रजू है तमावल रजू है हमेशल सलामे सली खदम दामे के नीमल शिकते गरीबल परस्ते बिलंदल मकान है जमीन जमाने तमीजल तमा मेर जूल ने दाने हरीफल अजी मेर जायक अजकीने अनेकल तरंग है वेद है पंग है अजीजल निवाज है गनीमल खिराज है रुक्त स्वरूप है त्रमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रवाह है सुजुक्त सदा है सदेव स्वरूप है भेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्त सुलाम है।

विवेकान्ते शुभं सर्वभागे सुसर्वानुरागे त्रिभुक्त स्वरूप है सिज है शूद है कि नरकम प्रणास है पृथ्वी प्रवास है नृक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है।

दिन अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिवादे गंजे गादे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोतरे न बोधरे न सतरे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते न साक्षरी के

नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजल नामे समस्तल निवासे निकाम विभूते समस्तल स्वरूपे कुकर्म प्रणासी सुधर्म विभूते सदा सचिदानंद सदर्म प्रणासी क्रीमल कुनिंदा समस्तल निवासी

ते पै दो काम पै भूपत अंत को नांगे पाए पधारे। जीत फिरे सब देश निशान को माज धोल मृदंग नगारे। गूंज के गूढ़ गजान के सुंदर सतही है राज हजारे। भूत भविख भवान के भूपत कौन गने।

गुरु समझो हमारा। नमस्कार तसी को हमारी सकल प्रजाज ने आप सुवारी सिवकन को सब गुम सो दियो सदरन को फल मोद कियो घट घट के अंतर की अंत बले बरे की पीर विशान चीटी दे कुंचर सतूला साप पर कृपा दृश कर भूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक की पीर पजाने घट घट के पर पड़ की जाने।

एकै रूप अनूप स्वरूप पारंग्यो राव के पुपांड जेर से दिसकी नीव तुझ गान बोरज तिनी गौ भूल राजा बैठा कम सिंह प्यो शंकर कैठा कहूं सिमट प्यो शंकर कैठा सिगरी सिद्ध खाए चम्बवा जुगा श्रु स्वंब अवरछा मेरी तुम करो सिख्या वार सिख्या संगरो दुष्टिते उड़वत पाता सकल मलेश करो अणघाता जे तू दसन नहीं परे तिनके दुष्ट दुप्त है मरे पुरख जीवन प परे तिहारे तिनके तुम संकट सब उठारे जो कल को एक बार तिहाई है।

जाके एक और चौबी होके चौबी सम्मत 1776 जय अर सहज पंथी इनके जय बहादुर सुधी अष्टमी रविवार तीर्थ तद्रव गंध सुधारा सोई है पाएंगे जब ते तुमरे।

दोई कुदरत साजिए कर असिन डठ जाओ। दाता करता है आप तो तुझ देवे करे पसाओ, तू जानो ही सबसे दिल ऐसे जिंद कुआओ। कार्य असिन डठ जाओ, कार्य असिन डठ जाओ।

महाराज जी दे बचन श्रवण करदे हां, चितवृत्तियां नूं एकागर करो, रसना दी पवित्रता लई और मन दी एकाग्रता दे लई। सारी संगत आखो जी सतनाम।

एक नाम जपना वाहिगुरु दा। बाकी जो गल्लां तुसी जवान नाल करदे सी सुनदे सी फसे सी जिथे वो सारियां बेकार ने। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। बाकी दे काम जेड़े वाहिगुरु तो तोड़न वाले है सब निराफल ने, किसी काम दे नहीं हन। रहाओ विश्राम दे के महाराज जी के वचन कर दे है। एहो मन ईटी हाथ करो फुन नेत्रों नींद न आवै। कहंदे जदों बीबियां पुराने समयां दे विच दुध रिड़कदियां सी चाटी दे विच पा के, उदों एक रस्सी जिहड़ी आ उह जिहड़ी मधाणी पाई जांदी सी उहदे उपरों दी वट मार के उहनूं गुल्लियां जिहियां दो हत्थ च फड़ लैंदियां सी जिहदे आसरे दुध रिड़कदियां सन। महाराज जी कहिंदे इह मन ते चित नूं उह गुल्लियां जिहियां बना लो, प्रेम दी रस्सी पा लो।

एकाग्र करके चित्त नूं रोक के वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु फिर जपो। कहिंदे जपदिआं ख्याल रखना नेत्रों नींद ना आवे, जपदे जपदे सौ नहीं जाना, हक सतनाम श्री वाहिगुरु, फिर जपदे जपदे सौ नहीं जाना, एकाग्र चित रहना, सावधान रहना। इह ना जदों वाहिगुरु वाहिगुरु जपदे आ इत्थे तां जी सौखा काम है, जदों इस तों गाहां सुरत दा अभ्यास शुरू हो जांदा, सुरत अनहद शब्द च टिकणी शुरू हो जांदी है, उत्थे जा के बड़ी तंगी आउंदी है कई गुरमुखां नूं भी, अखां बंद करके बहिंदे है ते थोड़ी देर बाद गर्दन जिहड़ी है ओह ठोडी गर्दन नूं लग के उत्थे इक नींद नहीं हुंदी। इह महापुरश लोग इहनूं तंदरा कहिंदे है, नींद वर्गी ही अवस्था हुंदी है ते उत्थे बंदा सो ही जांदा। इक तरह दा बंदे नूं लगदा मैं समाधि च हां, मेरा ध्यान टिकिया होया। सो इहदे तों महाराज जी कहिंदे सावधान रहना जप दे समय भी और सुरत दे अभ्यास दे समय भी। इह ना होवे तुसीं सुत्ते पए रहो लम्मा समा, तुहानूं पता ही ना होवे, क्योंकि सुत्ते पियां दी अवस्था नहीं बनदी कोई, अग्गे दा मार्ग रुक जांदा उत्थे।

महाराज कहते हुण अमृत पाउणा कित्थे आ इह कहिंदे संपट कहिंदे ने डब्बे नूं मन रूप डब्बे दे विच डोलू दे विच ते कहिंदे फिर जिन्हां ने अपने मन रूप भांडे च अमृत पवा लिया ना उन्होंने भाई सत सर नावन सच्चे तीर्थ ते इशनान प्राप्त कर लिया है। आखो सतनाम। जो मन रूप बर्तन च अमृत पैंदा ना अंदरला सच्चे तीर्थ ते इशनान हुंदा मन दा। बाणी दे विच महाराज जी ने तीर्था और सरोवरां दा जिक्र किया किन्ने तरह दे ने। एक महाराज जी ने कहा अमृत सरोवर श्री गुरु रामदास साहब जी दे दर दा। कल व्याख्या आपां सुनी सी सारी। दूसरा है गुरु तीर्थ दरियाओ गुरु सरोवर है। तीसरा है वाहिगुरु दे नाम दा सरोवर अंतरात्मे दा सरोवर अंतरात्मे दा तीर्थ। ए तिन्ने तीर्थां दा वखरा वखरा महाराज जी दी बाणी च जिक्र है वखरा वखरा महात्म है और वखरा वखरा ही महाराज साहब जी ने उनु साजिया है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु तीर्थ शब्द रूप च साजे है ते अमृत जल रूप दुनिया भी जल रूप च साजे है ते जेड़ा अंदरला सरोवर है मन मंदिर तन वेस कलंदर घट ही तीर्थ नहावा एक शब्द मेरा प्राण बस्त है बहुत जन्म नावा। ते जिहड़ा अंदरला तीर्थ है वह साढ़े हिरदे च साजिया महाराज जी ने। तिना की थां वखरी वखरी है महात्म वखरा वखरा है। हां महाराज जी कहिंदे जिहड़े गुरु रामदास साहब जी दे सरोवर च इशनान करदे है हौली हौली वह गुरु दे सरोवर कोल भी हो जांदे आ नेड़े शब्द दे सरोवर च भी इशनान कर लैंदे आ। ते जिहड़े शब्द दे सरोवर नाल जिवें महाराज जी ने अज जुगती दसी है अंदरला धोण दी अंदरला अपना धो लैंदे आ वह सच्चे तीर्थ दे इशनान भी कर लैंदे आ। तीसरे तीर्थ दा इशनान तीसरी कंडीशन च तीसरी अवस्था च जाके हुंदा है। असी मूंह तो कदे वाहेगुरु नहीं किया हुंदा पंज शनाना बंदे ने किया नहीं हुंदा ते ओ आत्म तीर्थ ते शनान दी गल करन लग पैंदा। ऐदां नहीं हुंदा हुंदा जे ऐदां हुंदा होवे फिर सारे ही शनान कर लैण फिर सारे प्रचारक भी ब्रह्म ज्ञानी होण प्रबंधक भी ब्रह्म ज्ञानी होण सारे फिर होण एवें ईरखा द्वैश च लड़दे ना फिरदे होण। सो चलो महाराज समत बख्शन सब नू। महाराज जी कहिंदे सत सर नावण वो सच्चा सरोवर सच्चे नाम दा तीरथ उत्थे फिर मन नहाउणा करता है फिर ये मन वो मन नहीं रहिंदा उदो। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। जिहड़ा हुण है ना जिद्दां दा पता नहीं की सोच लैंदा किसी बारे भी पता नहीं रंगा रूपा च ही भेद करता रहिंदा किसी का रंग देख के नफरत करन लग पैंदा किसी का देख के खुश होन लग पैंदा इन्नी क औकात है इस मन की इत्थे क फसिया रहिंदा सारी जिंदगी। महाराज जी कहिंदे जिहड़ा नहा लैंदा ना महाराज दे तीरथ ते भाई वह सब च वाहिगुरू नूं देखदा फिर फिर वह की कहिंदा पावन पाती तृप्त करे वह वाहिगुरु नूं तृप्त कर लैंदा अपनी भावना दे पत्ते फुल महाराज दे अगे अर्पण करके। एक अर्थ जिहड़ा इस पंक्ति दा इस तरह भी महापुरश करदे आ वह इकला अर्थ हुंदा प्रकरण च आपां चल रहे हां
ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰੂਪ ਭਾਂਡੇ ਚ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਵਾਉਣਾ ਨਾ, ਔਰ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਪੱਤੇ ਹੀ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਲਵਾ ਲਵ ਭਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪਿਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਗਰੀਬੂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੌਡੀ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਚ ਲਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਭਾਈ ਗਰੀਬੂ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

मूरत हर गोबिंद सवारी चली पीढ़ी सोडिया रूप दिखावण वारो वारी दल भंजन गुर सूरमा वड जोदा पा बहु पर पुकारी पुछन सिख अरदास कर छे महिला तक दर्श निहारी अगम अगोचर सतगुरु बोले मुखते सुनो।

सारा जब कर कर तो कब हूं तो मैं मिल दे तर सब हूं जेते बदन से सब तारे आप अपनी बुझ चारे तुम सभी तेरे तनरालम जानत भेद भेद हर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आदि नील अनाद संभता का मूड चारत भेदा जा को भेव न पावत भेदा तां को कर पाहन अनुमानत मां मूड कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चिंतन आप अपनी बुद्धा जेती बणत भिन्न भिन्न तुय तेती तुमरा लखाना जाए पसारा कै जा प्रतम संसारा एक कै रूप नूस रूपा रंग प्यो राव के भूपा अंड जेर से तिजकिनी तुझ खान बोल दिनी कौ फूल राजा हवै बैठा कौ सिन प्यो शंकर कैटा सगरी सिर दिखाए चंब वाजवा सरू स्वंभ वाव रिछा मेरी तुम करो सिखो वार सिख संगरो दुष्ट जितै उठवा तुत पाता सगल मनेश करो रण घाता जे तु दसणी परे तिनके दुष्ट दुख तुम मरे पुरख जवन पग परे त्यारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकने हैं रचा ऐसा काला दुष्ट रिष्ट काला कृपा दिशन जान हरे हो ताके ताव तन कमो हरे हो रिद सिद कर्म सब हुई दुशा शिव सकिन कोई एक बार जिन तुम्हें समारा काल फास्ते ताए उबारा जिन्ना नाम त्यारो का दार दुष दुख ते रहा खड़केत में सन त्यारी आप दे लो वारी सब ठौर मोसाई दुष्ट दुख ते लो चाय कृपा करी हम पर जम माता ग्रंथ करा पूर्ण सवराता केल विक सकल देख को हरता दुष दुख यन कोचा करता श्री तुझा पै दयाला पूर्ण करा ग्रंथ काला मान बांछित फल पावे सोई दुख न तिसे व्याप्त कोई अड़ल सुने गुंग जो जाय सरसना पावे सुने मूर्चित लाए चतरता आवे दुख दर्द पौ निकट ना तिन नर के रहे हो जो जाकी एक बार चौपी गो के चौपी समरा सहज पणि जय हर सहज पंथीन कही जय पात्रो सुधी अष्टमी रविवार तीस तद्रव कंस द्वारा सुई है पाएंगे जब ते तुमरे तब ते गो आंख तिरे नी आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक है मत एक ना मान्यो सिमर शास्त्र वेद स्वय वो भेद कहे अमेक न जान्यो श्री इस पान कृपा तुमरी कर मैं ना क्यों सब तुहे बखाने दो।

0: बोले सोनेहाल बहुत बहुत धन्यवाद सारे ही ढाडी जथे दा हुण आप जी दे सनमुख कुछ समय वास्ते आप जी नूं सत्कारयोग भाई साहब भाई गुरजंट सिंह जी पटियाले वाले गुरु पातशाह दा पावन इतिहास पावन बाणी दी विचार सरपण करवाउणगे। इस दे नाल ही आप संगतां दे चरणां च बेनती करां कि जो आउण वाला हफ्ता है 17-18-19 तरीक नूं कार सेवा वाले महापुरश संत बाबा सेवा सिंह जी किला आनंदपुर आनंदगढ़ साहिब वाले दी याद नूं मनाउंदिआं होइआं नवां शहर इलाका निवासी संगतां वल्लों विशेष तौर ते समागम उलीके गए हन। आप संगतां नूं बेनती करांगा कि उन्हां समागमां दे विच वध चढ़ के हाजरी भरन दा जतन करो। इस दे नाल ही गुरद्वारा साहब फ्रीमोट विखे सितंबर 5 अते 6 नूं जौहरे तेग जो कि गतके दा कंपटीशन कराया जा रहा है संगत दे चरणां विच बेनती है कि जरूर इन्हां इतिहासक दिनां दे उत्ते हाजरी भरन दा यतन करो। आओ हुण सत्कारयोग भाई साहब भाई गुरजंट सिंह जी उन्हां पासों गुरमत विचारां सरपण करिए। पलाही नगर निवासी संगतां दा धन्नवाद करदा उत्थे इस गल लई खिमा दा जाचक है कि समागम दौरान बहुत सारिया कमियां पेशियां भी रह गई होणगियां उन्हां लई खिमा दे जाचक हाँ। तो आओ हुण भाई साहब पासों कुछ समय वास्ते आपां गुरमत विचारां सरपण करिए उपरां दीवान की समाप्ति होवेगी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰਸੂਰਮਾ

भी ना तलवार नाल भी ना हटिया। महाराज जी कहिंदे फिर अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने सानू कहा कि जाओ, कहा जाओ दुनिया में अवतार लो, राह हक पे ले आओ मखलूक को।

छोड़, इन्हें हक रवी से फना करके छोड़। कहने तेनू रब्बी अधिकार दिते, जेड़े पखंड करते ने अडंबर करते ने उन्होंने पखंड भन के रख दे, और जेड़े जालम जुलम करते ने जुलम करने वाले जालमां दे मूह भन के रख दे। अकाल पुरख वाहिगुरु का हुक्म कलगीधर पातशाह महाराज जी नूं मिलिया, ते महाराज जी ने फिर इहो जी कला अपनी बाणी दे राहीं वरताई के किसे विद्वान दे बोल ने, वो कहिंदे पढ़ के तिहारी बाणी श्री मन गोबिंद सिंह, जीवन मुक्त जन होए रहे अगमे, शेर मेना साध पण, साध मेना शेर पण, दो पण देखिए आप ही के मग में। वो कहिंदे महाराज थोड़ी बाणी पढ़ के ऐसा आनंद आउंदा है जदों अकाल उस्तत पढ़ी दी है। महाराज सुरत अकाल पुरख वाहिगुरु च डिग जांदी है, ते महाराज ज्यों ही चंडी दी बार पढ़ी दी है, महाराज ज्यों ही बचित्र नाटक च तुहाडे जंग पढ़ी दे ने, खून खौल उठदा है, ते महाराज साहब जीओ शरीर पसीने नाल भिज जांदा है, और उदो अनुभव हुंदा है अकाल उस्तत पढ़दे आ साध पुणा अपने आप च अनुभव हुंदा है। बिरती अकाल पुरख वाहिगुरु च जुड़ी नजर आउंदी है, ते जदों महाराज पढ़ी दी है चंडी दी वार, महाराज जदों पढ़ी दे है सतगुरु साहिब जी आप जी दे लिखे हुए मैदाने जंग दे कौतक, महाराज जदों पढ़ी दी है शस्त्र नाम माला, उदों रगां दे विच खून दौड़ना शुरू कर दिंदा। महाराज जमया खून सतगुरु साहिब जीओ शेरां वर्गी ताकत दिखाउण लग पैंदा है। महाराज साहिब जीओ साध च सुनिया साध पुणा ही हुंदा है, ते शेर च पुणा सुनिया शेर पुणा ही हुंदा है। महाराज थोड़े सिखां च साध पुणा भी सिरे दा है, ते थोड़े सिखां दे विच शेर पुणा भी सिरे दा। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। साध पुणा सिरे दा किवें?